जय बड़ियाप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम वसारे हैं ते कम जात, नानक नावे बास नारा गुरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम परगास, मेरे मीत गुरदे मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम पर प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ, हर जन के वड पाग वडेर, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हरस नाम न पाया ते पागन जम पास, जो सतगुर सन संगन नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लखास, तन तन सासंज तरस पाया, मिल जा नानक नाम प्रगारा, गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितव है उदम, जाय आरा जियो परिया, सहल पत्थर में जंतो पाए, ताकार कागे कर तरिया, मेरे माधो जी सात संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काश हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर संभाहे ठाकुर काहे मन पाओ करिया, उड़े उड़ा वैसा कोसा ते पासे मरे सरिया, तिन कवन खलावे कवन जगावे, मन में सिमरन करिया, सबन दान दास सदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सौ पुरख क्या ओंकार सतगुर प्रसाद, सौ पुरख नजनार पुनर्न गमा गम पारा, सब त्यावे सब त्यावे तो जी, हर सचे सिजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर दया वो संतो जी, सब दूब सारण हारा, हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कड़ कड़ अंतर सर्ब निरंतर जी, हरे को पुरख सुमाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे जोज वडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिना वरना जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आ वखाणा, जो सेवै जो सेवै तो जी, जा नानक तिन करवाणा, हर त्यावे हर त्यावे तो जी, से जन जुग में सुवासी, से मूह से मूत पै जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी, जिन निर्भउ जिन हर निर्भउ त्याया जी, तिनका पाओ सगवासी, जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हरा रूस मासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत तेरे पासलान तो जी, अनक अनेक अनंता, तेरे अनेक ते करे हर पूजा जी, तब तापे जवे बेअंता, तेरे अनेक
तेरे अनेक पड़े भव सिमर साजी कर क्रिया खाड़ कर्म करंता से भगत प्लेजन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुर परंपर करता जी तो जेवड़वर न कोई तू जो जो एको सदा हदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करें सोई तुदे आपे से सब पाई जी तुदे आपे से सब गोई जनना ने गुण गावे करते के जी जो सब से का जानू आसा महला चौथा तू करता सचार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिहनों किरपा करे ते नाम रतन पाया गुरमहला दा मन मोगवाया तोदे आप विछोड़े आया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माए तुझ बिन दूजा कोई नाए जी जंद सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तो जाना है सोई जन जाने हर गुण साधी आप खाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम संभाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद में दूजा वर न कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नान गुरमु प्रगट होए आसा महला पहला तेत सरल भैले नु आसा पानी पाव तिने किया पंक जो मो पग नहीं चाले हम देखा तैं डूबी अले मान एक न चेस मूड मंदा हर बिस तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म भया प्राणवत नानक तिनकी शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल सा संद पाई केवल नाम सरंजाम ला पाओ जल तरन के जन बिरथा जात रंग माया के रहाओ जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध न जाने हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा पातशाही दसवीं कव्यो आज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा ताव चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दोष सब है तुम कहावो आप हादे मोहे बचावो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक से सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिया सब बैरन को आसंगरिया पूर्ण होए हमारी ही आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहूं तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चौं चौं सतर हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे अभरी है मरन काल का त्रास नवरी है हो जो सदा हमारे पच्छा सिरिया तो जूर करियो रच्छा राह लियो मोय राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्ट कहे हमता तुम हो पुरी चतर दास कंता काल पाए ब्रह्म अवतरा काल पाए शिव जो अवतरा
काल पाए कर वे प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दया जशन अपजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सर्व प्रजा जने आप सवारी, सेवगन को सेवगन सो दियो, सतरंग को पलमो बद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सब पर के पा दृष्ट कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी, सो पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाने, खड़ खड़ के बड़ बड़ की जाने, जाबुद कर करां कर तारा, पर जातर तब दे अपार, जाबा कर कर तो कहूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बदन से सब तारे, आपे अपने बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत नरालम, जानन बे भेद रयालम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नीलन आद संभ, ताका मूढ़ जात भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कृपाहन मानत, महा मूढ़ का पे न जान, महादेव को कह सदाशिव, निरंकार का चिन्त न भय, आवे अपनी बुद्ध है जेती, बरनाता पेन पेन तू तोहे तेती, तुमरा लखान जाए पसारा, के भैसा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्योरा कहीं भूपा, अंडर जेर से दिनी, उत्भुज खान बाहोर रच दीनी, कहूं पूरा जाहूं बैठा, कहूं सिंह प्यो शंकर कैठा, सगरी से दिखाए अचंभव, आद जगा श्रू से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबारे से संगरो, दूज ते उठत पाता, सकल मलेश करो रणगाता, जया तो सब सरणी परे, तिनके दुष्ट दोत है मरे, पुरख जौन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रचा होए ताए सब काला, दुष्ट रिटरे तर काला, कृपा दृतन जाए न हर हो, ताके ताव तनग में हर हो, रिद सिद्ध कर्म सब होई, दो स्वै सह सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल वांते ताए उबारा, जिन नर नाम त्यारो कहा, दार दो दो तेरा, खड़ग कहत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो अबारी, सर्व ठोर मोह सहाई, दोष्ट दो ते लियो बचाई, सवैया पाए गए जब ते तुम रे, तब ते को आह तरे नियाने हो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने हो, सिमरत शास्त्र बेसब है, बहु पेद के हम एक न जाने हो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोय बखाने हो, दोहरा सगल द्वार को छाड़ के

राम कली महला तीजा आनंद क्यों ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राव रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दोतं गावो हरि के राम जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सावे सारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गला समरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कार तेरे करता तेरे सब किश है जे दे सो पावे सदा सिपसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसे आओ वाजे शब्द गनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन शां सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जे दियां ए वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द ते घर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जिद कर तारिया पंज दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तोर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक ते सुख हुआ तित कार अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पैस्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पानीत कहते पवित सतगुर आप पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ साध संदो विचारो अमृत नाम ठाकुर का पेओ किसका सब सदारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका हो अदारो एह वस्त न जाई नितिन राखुर तारो तम संसार चन लग तरिय सब नान ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जा तो नाही मैनो जो कितो मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परमस्कार जो सत्संग जीओ सतगुरु की रहमत हुई है सोधर दे दीवान दी हाजरियां भरिया ने शब चौंक च कीर्तन उपरंत नितनेम की बाणी सोधर रह साहब के पाठ होए ने आपने श्रद्धा भावन ते प्यार दे नाल सरवण कीते ने अज सतगुरु ने कृपा की है बीबी सरजीत कौर बैंस
ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ

कर्ण करा वनहार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आपे, आपन संग आप प्रभराते, तुमरी उस तो तुम से होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में शेष धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मद मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल वाणी में अमृत वाणी, हर को जा सुन रसन बखानी, सगल

0: श्लोक तजो स्यान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए। अश्वजी मानो कीटक बिरथी सब जान देवन को एक भगवान जिसके दिए रहे अकाए बोर नत सना लागे आए मारे राखे को आप मानो के किस ना ही हाथ तिसका हुकुम भूल सुख होए तिसका नाम रखंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस तो मन में कर निंकार कर मन मेरे सत विहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ल जियो नैनो पेख टागर का रंग साध संग बिन से सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सरवण हर कथा हर दरगा नानक उज्जल मथा मड़ पाकी ते जन जग माह सदा सदा हर के गुण गाय राम नाम जो करे विचार चेतन बंत गनी संसार मन तंग मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान होते सुखी एको एक एक पछाने इत उदकी हो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानया नानक तिने निरंजन जानया गुर प्रसाद अपने अब सूझै तिसकी जानो तिस नाम बूझै साध संग हर हर जस कैद सर्व रोग ते हर जन रैद अनजन कीर्तन केवल बुखियान गृहस्थ में सोई निर्वाण एक ऊपर जे जन की आसा तिसकी कटिए जग भी फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख
1: जैसा सा तैसा दृष्ट आया अपने कार्ज में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई अस्थूल नहक जन्म नह किश मरे अपन चले ताप ही करे आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप हनक जुगत राज थापो थाप अविनाशी नाही किश खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै धनवंत प्रभ के सेवक सगल उधारन प्रभ के सेवक दुख विसारन आपे में लय कृपाल गुर का शब्द जप है निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुर को तुम करमान जो किश करे सुप्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय होवे सो होए करने हार पछाणे सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माए समाए ओए सुख निदान उन्हों बने आए

एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम के रंग, सेवक को प्रपाल नहारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारे, नानक सो सेवक सा सा समारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपद रखे, ताकि गत में तो कोई ना लखे, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया, निकी कीरी महकल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका शासन काटत आप, ताको राखत देकर हाथ, मानस जतन करत वो भात, तिसके करत बिरथे जात, मारन रख है अवर न कोए, सर्व जिया का राखा सोए, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख विडाणी, बारंबार बार प्रभ जपिय पी अमृत मन तन तरपिय, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर नाही दृष्टाया, नाम धन नाम रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम राज्यो जंत्र बताने, मन तन नामे नाम समाने, ऊठ

अंधकार दीपक बरगासे, नानक भरम मोह दुख तै ते नासे। तपत माए ठांड वरदाई, आनंद पिया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पौ चूका निरपो होए बसे, सगल ब्याद मन ते खै नसे। जिसका साधन कृपा धारी, साध संग जप नाम उरारी। थित पाए चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आव सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही।

संग एक बस्त दी जय कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ संत दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल।

रूप आप यू बरजा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तै बिन मैल कौ क्या धोता। जय निरंजन निरंका निर्वाण, तै कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तह शल शिदर लगत को कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावै, तै किस भूक त्रिवतावै। करन करावन करने हार, नान करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। जय सर्व कला पै प्रवीन, तै वेद देव कहा को चीन। जब अपन आपा बोर धारे, तो सगन अब सगन कहा विचारे। जय आपन ऊच आपन आप नेरा, तै कौन ठाकुर कुन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानू आप। जय अचल अशेदा भेद समाया, ऊहा किसे व्यापत माया। आपस को आपै आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता, तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप आप दियार, तै कौन कतै कौन सुन हार। बहु बेअंत उच ते ऊंचा, नानक आपस को आपै पहुंचा। जय

निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमणि सब ते ऊच ताकि शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि सुखमणि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शिफिर गर्भासु ना परियारे। वाहिगुरु जी कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार

0: महान है,
1: गुरु नानक दा दर ए महान है,
0: उच्ची सुची जी दी सब ना तो शान है,
1: उच्ची सुची जी दी सब ना तो शान है,
0: जिथे आप वसे खुद मेहरबान है,
1: जिथे आप वसे खुद मेहरबान है,
0: जिथे वर्तन अजब बहार।

सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कच्चो कंचन पयो शब्द गुर श्रवण सुनयो, बिखते अमृत होयो नाम अमृत मुख पण्यो। लोहो होयो लाल, लोहो होयो लाल, नदर सतगुर जद तार, पाहण मानक करे ज्ञान गुर कयो विचार। काठो श्रीखंड सतगुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए। सतगुरु चरण जिन परसिया, से पश परेत सुर नर पए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, सोही महला चौथा। जिनकै अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त पए जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाए। जिनकै अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए। ते मुक्त पए जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाए। मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हमें रोग गए। रहाओ ब्रह्मा विष्ण महादेव, त्रै गुण रोगी विच हमें कार कमाई। जिन किए तिसहि न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सोझी पाई। हमें रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख पारी। गुर प्रसादी को बिरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी। जिन सिष्ट साजी सोई हर जान, ताका रूप अपारो। नानक आपे वेख हर बिगसै, गुरमुख ब्रह्म विचारो। जिन सृष्ट

नहीं तुद जिहिया। बुद्ध हो पुरख बिदाते तां तू सोहिया। बस दी सगन पर अनूप रामदास पुर हरिया नानक कसमल जाहे नाय रामदास सार। चात्रिक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसह को आहिए। बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे हरे हां तिन हर त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहारने। मित का चित अनूप मरम न जानिए गाहक गुणी अपार सो तत पछानिए। चिते चित समाए ता होवे रंग कना हरिया चंचल हो चोरे मार ता पावे साच तन्ना। सुपने उबे पई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख बिराजित पेख मन बंचला। खोज जतां के चरण कहो कत पाईए हरिहां सोई जतन बताए सखी प्रियो पाईए। नैण ना देखे साध से नैण बहाले आ करण न सुनही नाद करण मुंद कालिया। रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है रसना जपै ना नाम तिल तिल कर कटी है। हरे हां जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन कटी है पंकज फाथे पंख महा मद गुम्फे आ। अंग संग उर जाए बिसरते सुम्फिया है कुए सो मीत जो तेरो बिखम गांठ नानक एक श्री तरनाथ जे टूटे ले सांठ। तावो दिशा अनेक प्रेम प्रभु कारणे पंच सतावे दूत कवन विद मारने। तीखण बाण चलाए नाम प्रभु त्याई है हरे हां महा विखादी खात पूरन गुरु पाई है। सतगुर कीनी दात मूल नानक खुटई खावो पुंचो सब गुरमुख छुटई। अमृत नाम ने दान दिता तो सुहार नानक सदा रात कदे ना जाहे मर जिथे जाए भगत सो थान सुहावना। सगले होए सुखर नाम ते आवना। जिय करण जयकार निंदक मोए पाच साजन मन आनंद नानक नाम जप पावन पुतत पुनीत कथे नहीं सेवीऐ। झूठे रंग खुआर कहाँ लग खेवीए हर चंदौरी पेख काहे सुख मानिया। हरे हां हों बलिहारी तिन जे दरगह जानिया। किन्ने कर्म अनेक गवार विकार खन महां दुर्गंध वास सठ का शार तन। फिर तो गर्भ गुबार मरना नहीं जानई। हरे हां हर चंदौरी पेख काहे सच मानी जिसकी पूजा याद तिसै कौन राखई। वैद कन को पाव कहां लो पाखई एको जेत गवार काज तेरा आवई। हरे हां बिन आवै तन छार बिरथा सब जावई औखद नाम पार। मुल्क बीजई मिल मिल खावे संत सगल कौ दीजई। जिसे प्राप्त हुए तिसे ही पावने हरे हां हम बलिहारी तिन जी हर रंग रावने। वैदा संदा संग कठा होए उखदे आए रास विच आप खलोए आ। जो जो ना कर्म सो कर्म होए पसरिया हरे हां दुख रोग सब पाप तन ते खिसरिया। चौ बोले महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। समण जो इस प्रेम की दम के होती साट रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहिया बीच न राई होत चरण कमल मन बेदया बूझन सुरत संजोग। सागर मेरो ध्यान पान नव खंड बसुदा भरम मूसन प्रेम भ्रम कै गण वेख कर कर्म। मुसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मैं पवर रहे लपटाए। जब तप संजम हरख सुख मार मैं त्यार गर्भ।
मुसन निमखक प्रेम वार वार वार देओ सर्ब मुसन मर्म न जानई मर्त हिरत संसार। प्रेम ब्रह्म न बेदे और जो मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिचरत प्रेम बेहाल। मुसन तभी मुसी है बिचरत पुरख दयाल जाको प्रेम सवाओ है चरण चितवद मन माहे। नानक बिरहि ब्रह्म के अनक तू जाहे लख घाटी उच्चो कहनो चंचल चीत बिहाल। नीच कीच निम्रत कणी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजम श्याम चंद्र बदन चित चार। मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद न सिमरत अंग। प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग सलोक भगत कबीर जियो के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम आद जुगादी सगल भगत तांको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात को सबको हसने हार भले हारी इस जात को जे जपयो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो सर्व सुख को नाए को राम नाम रस पियो।

कबीर सब ते हम बुरे, हम तज पलो सब कुए। जिने ऐसा कर बुझे, मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझ है पै, अनक करे कर पेश। हम राखे गुरे अपने, उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारी है, जेहे मुए सुख हुए। पलो पलो सब कोक है, बुरो न माने कोई। कबीर राती होवे कारियां, कारे उबे जंत। लै फाहे उठ ताव ते, से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा फला, बेड़े उटाक पलास। ओए पी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास।

कबीर संतन की चुंगिया फली पाठ कुश्ती गाओ। आग लगो ते तौल हर जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मोए क्या रोई है जो अपने गृह जाए। रो भो साकत बापरे जो हाट है हाट बिकाए।

कबीर माया डोलनी पवन वह अवतार, जिन बलोया तिन खाया अब्र विलो बनहार।

कबीर सूख नाए जोग करे जो तै मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद।

कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुबदा जाए, भावे लांबे केस कर भावे करर मुंडाए। कबीर जग का जल की कोठरी, अंध परै तिस माहे, हों बलिहारी तिन को पैस जो निकस जाहे। कबीरे हो तन जाएगा सको तन लेहो बहोर, नांगे पावों ते गए जिनके लाख करोर। कबीरे हो तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कै संगत कर साध की कै हर के गुण गाए। कबीर मरता मरता जग मुआ,

कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारे बार। ज्यों बन फल पाके, पोए गृहे बहुर न लागे डार।

कबीर चंख ना चंखिए तुमरो कहियो ना होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट ना सके कोए। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोए, राम कसौटी सोस है जो मर जीवा होए। कबीर उज्जल पैरे कापरे पान सुपारी खाहे, कसहर के नाम बिन बादे जमपुर जाहे।

कबीर हार जरे ज्यों लाकरी केस जरे ज्यों कास एहो जग जरता देख कै पहयो कबीर उदास। कबीर गर्भ नागी जिय चामल पेटे हाड हैवर उपर छत्र तड ते फुन तरनी गाड। कबीर गर्भ ना कीजिए उच्चा देख आवास आज काल पोए लेटना ऊपर जामै कास। कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना सिए कोए अजहों सो ना उस मुंदर मैं क्या जानो क्या होए। कबीर गर्भ ना कीजिए देही देख सुरंग आज काल तज जाहोंगे ज्यों काचुरी पोयंग। कबीर लूटना है ता लूट लै राम नाम है लूट फिर पाछे पछोताहोंगे प्राण जाहेंगे छूट।

पांचों लड़का जार कै रह राम लिव लाग। को है लड़का बेचोई लड़की बेचे कोए, सांझा करे कबीर स्यों हर संग बण जो करे। कबीर हे चेतावनी मत सहसा रह जाए, पाछे भोग जो भोग वे तिनको गुड़ लै खाए। कबीर मैं जान्यो पढ़बो पलो, पढ़बे स्यो पल जोग, भगत ना छाडो राम की पावे निंदो लोग।

कबीर हर ना दुबला हे हरिया राताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल।

आए। कबीर हर दी पीर तन हरे, चूण जेहन ना रहाए। बलिहारी है प्रीत को, जेह जात भरण कुल जाए। कबीर ऐसा सतगुर जे मिले, तुठां करे पसाओ। मुक्त द्वारा मोक ला, सहजे आवो जाओ। कबीर नाम है छान ना छापोरी, नाम है घर नहीं गाओ। मत हर पुछे कौन है, मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो ता हर कै द्वार। मत हर पुछे कौन है, प्राह मारे बार। कबीर ना हम किया ना करहेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किस हर किया, पयो कबीर कबीर। कभी

कबीर डूबा था पै उबरे ओ गुण की लहर चबक, जब देखियो बेड़ा जर जरा तब उतर परे ओ हों फारुक।

कबीर रस को गांडो चूसी है, गुण को मरिए रोए। अवगुणिया रे मानस है, पलो न कह है कोए।

कबीर पारस चंदने तिन्हें एक सुगंध तेह मिल त्यो तुम पए लोहो काठ निरगंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओहो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिले ओ तिन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हो ही पला दारू मेरे बस एह तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस।

कबीर सात समुंदै मस करो, कलम करो बन राय, बसोदा कागद ज्यों करो, हर जस लिखन न जाए।

कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पांचों लड़के मार के रह राम ल्यों लाए।

कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर कह तू बया जा को कहता और। कबीर मारी मरो को संग की, केले निकट ज्यो बेर, हो झूलै हो चीरी है साकत संग ना हेर।

और कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाह हो, साकत संग न कीजिए, जानते होए बिना हो।

सुन कबीर सिख शाखा बहुते किए केसो कियो ना मीत, चाले थे हर मिलन को पीछे अटक्यो चीत। कबीर कारण बपरा क्या करे, जो राम न करे सहाय, जिह जिह डाली पग धरो सो।

कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जेह कुल दास ना उपजै सो कुल टाक पलास। कबीर है गए बाहन सकन कान, लाख तज्जा फहराहे आसुक ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाहे। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बिथरे अंधा निकस्यों आए, जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजियो भूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ कै कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है साथ ना लीजै कोए, पाछे पाऊँ ना दीजी है आगे होए सो होए।

कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहो अंत यार याद कबीर चरण कमल की मौज।

कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह के कहो कहे ना को पतियाए। हर जैसा तैसा ओही रहो हरख गुण गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे। जैसे बचरे कूंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल। चातरक ज्यों तर सत रहे तिनको कौन हवाल। कबीर चकोई ज्यों निस बिछड़े आए मिले प्रभात। जो नर बिछड़े राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रहना यर बिछोरिया रहो रे शंख मजहूर। देवल देवल ताहड़ी देसे युगवत सूर।

वैसो सुख। कबीर सूता क्या करे, उठ के न जपे मुरार। एक दिन सोवन होए गो, लांबे गोड पसार।

कबीर साकत संग न कीजिए, दूरे जाइए भाग। बासन कारो परसिए, तौ कछ लागे दाग। कबीर राम न चेतियो, जरा पहुंचियो आए। लागी मंदर द्वार ते, अब क्या काढ़िया जाए।

कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुँचे खसम को, जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे मोल ले, मन हठ तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग धर, भूले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार, इस प्रवासे जो रहे बूढ़े काली तार।

कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिसकार, जिन्हें जमुआ सिरजिया सो जपिया परवदगार। कबीर कस्तूरी भया पवर भई सब दास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर

कबीर साकत ते सुकर फला राखे अच्छा गाऊ। साकत बपरा मर गया कोई न लह नाऊ।

कबीर खे हुई तो क्या भया, जो डला गया अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग।

ऊच भवन कन कामनी शिखर तजा फहराहे ताते पली मधु करी संत संग गुण गाए।

कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट, तहां कबीर है मट किया खोजत मुन जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभै ओड, हीरा किसका बापरा पूजन रत्न करोड़।

कबीरा जहा ज्ञान तहा धर्म है, जहा झूठ तहा पाप, जहा लोभ तहा काल है, जहा खिमा तहा आप।

कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

सुरंक कबीर पाल समूहा सरवर भरा पी ना सकै कोई नीर भाग बड़े तैं पायो तू भर भर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसहे त्यों हे खिसै शरीर ये दो अखर ना खिसहे सो गह रहे ओ कबीर। कबीर कोठी काठ की दह दिस लागी आग पंडित पंडित जल मुए मूर्ख उबरे भाग।

कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान। कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए, कै जाने अपन तहनी कै दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पहो प्रया, दिशा गई सब फूल ओरा गर पानी पया, जाए मिलो ढल कूल। कबीरा तू रसकेल कै पुरिया बांधी देह, दिवस जा रखो पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पई सब देह, गुरु गोबिंद के बिन मिले पलट पई सब खेहे।

कबीर जिन हो किछु जानिया नहीं, तिन सुख नींद बिहाहे। हम हो जो बूझा बूझना, पूरी परी बलाए।

कबीर चोट सहेली से लकी लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास।

कबीर जा घर साधना सेवी है, हर की सेवा नाहे। ते घर मर हट सारखे, भूत बसे तिन माहे।

कबीर सतगुर सुर में बाहया बाण जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे छेक।

कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जात देखो तात तू।

कबीर ऐसा बीज बोए बारहा मास फलंत, शीतल छाया गैर फल पंखी केल करंत। कबीर दाता तर वर दया फल उपकारी जीवंत, पंखी चले दिसावरी बिरखा सुफल फलंत। कबीर साधु संग परापति, लिखिया हुए लिलाट, मुक्त पदार्थ पाई है ठाक नाव घट घाट।

कबीर भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए हे तीर्थ व्रत नेम किए ते सबै रसातल जाहे। नीचे लोयन कर रहो ले साजन घट माहे सब रस खेलो पी सो किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी तुन रखत रह जियो नीचे लोयन क्यों करो सब घट देखो पियो। सुन सखी पी मह जियो बसै जी मैं बसै के पियो जियो पियो बुझो नहीं घट मैं जियो के पियो।

कबीर जो गृह करे ता तर्म कर नहीं ता कर बैराग। बैरागी बंधन करे ता को बड़ो या भाग।

फरीदा जे जाना तिल थोड़े संभल भुख परी, जे जाना सहु नंढड़ा ता थोड़ा मान करी। जे जाना लड़ छिजना पीढ़ी पाई गंड, तैं जीवड़ मैं नाहे को सब जग डिठा हंड।

चित। फरीदा थी उपवाही दब, जे साईं लोड़ है सब एक छजे ब्याल ताड़िए, ता साईं दे दरवाड़िए है। फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड़ ना कोए, जीवंदिया पैरां तले मोया उपर होए। फरीदा जा लब ताने हो, क्या लबता कूड़ा ने हो, किचर चत लंघाइए छप्पर तुट्टे में हो।

कमादै अरकाग दै कुन्ने को एलियाहा। मंदे अमल करिंदियां इस जाए तिनाहा, फरीदा कान मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात। फरीदा रती रत ना निकलै, जे तन चीरै कोए जो, तन रते रब स्यों, तिन तन रत ना होए, महला तीजा।

तीनों है। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाहे अगै मूला आवसी दोजक संधि जाहे। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मैं खलक वसै रब माहे मंदा किसनों आखी है जां तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपे आ जे गल कपे चुख पवन नाइती मामले रहा नाइती दुख चबन चलन रतन से सुनियर बह गए।

सवैये श्री मुख भाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहियो भरपूर सगल कट रहियो बेआपे। व्यापत देखी है जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आप उत्पत। एक है तू ही एक है अन नाही तुम पात हर अंत नाही परावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सरे एक जीह क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल साध बलिहार। अमृत प्रवाह सारे तुल भंडार परै हीते परै अपरे अपार परे अपनो पावन कर मंत्र न दूसरो तारे उपत परलो एक निमुख तो घर। आन नाही समसरु जियारो निर्मर कोट पराशत जाहे नाम लिये हर हर। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सरे एक जीह क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल साध बलिहार। सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहो सर्ब में आप है निरारे हर गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक अलख मुरारे। आप ही धारण तारे कुदरत है देखारे बरन चिहन नाही मुख नाम सारे। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सरे एक जीह क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल साधु बलिहार। सर्व गुण निदान कीमत ना ज्ञान ध्यान गुचे ते उच्चो जानी जय प्रभ तेरो थानंग मान तन तेरो प्राणंग एक सूत है जहानंग कवन उपमा देव बड़े ते बडानंग। जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देव अकल कला है सर्व को तानंग। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म सम सरे एक जीह क्या बखाने हां के बाल बाल बाल बाल सद बलिहार। निरंकार अकार अच्छल पूर्ण विनाशी हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंतिक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सो जान प्रभ तुम्हें मेलासी। धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहों ते रहो। सत सत हर सत सत सते सत भणिए दूसरा न अवर पुरख पौ रातन सुनिए। अमृत हर को नाम लै तु मान सब सुख पाए जेह रसन चाख्यो तेह जन त्रिवत अगाए जेह ठाकुर सो प्रसन्न भयो सतसंगत तेह प्यार। हर गुर नानक जिन परस्यो तिन सब कुल कियो उधार सच सबा दीवान सच सच्चे पै धरियो। सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप भुल ना भुलो रतन नाम अपार कीम न पवै अमुलो। जेहे कृपाल होयो गोबिंद सर्ब सुख तिन हो पाए हर गुरु नानक जिन परस्यो ते बहुड़ फिर जो न आए। कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तिस कोर तिर कीम न परिए। ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अग हो गयो नहीं जाए पूर रहयो सर्ब रहयो समाए। जिहे घाटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परस्यो इत उत सदा मुकते। प्रभ दातो दातार परयो जाचक इक शरणा मिले दान संत रेण जिहे लग भव जल तरना। बिनत करो अरदास सुनहो जे ठाकुर भाव।

राज जोग माण्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर। गुण गावे सनकाद याद जनकाद जुगहां लग धन धन गुर धन जन्म सक जथ पलो जग।

का सब बिमल विचार है। यह तत् जान्यो सर्वगत अलख विडाणी, सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी, गुरगम प्रमाण ते पायो सत संतोख ग्राहज लहेयो। हर परस्यो कल सुमल वै, जन दर्शन लहणे पयो, मन विसास पायो गहर गोह दर्थ दियो। गरल नास तन नठ्यो, अमे अंतर गत पियो, रिद विगास जागे वलख कल धरी जुगंतर। सतगुर सहज समाद रव्यो समान निरंतर, उधारो चित दर्द हरण पिख हे कलमल त्रशन। साधु रंग सहज कुल उचरै, जस जंपो लहणे रसन। नाम अवखद नाम आधार, अर नाम समाद सुख सदा निशान। सु है रंग रतो नाम स्यों कल नाम, सुर नर बो है। नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो, रब लोए दर्स परसिय, दर्शन परसिय गुरु कैठ सठ मज्जन होए। सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन पाओ, सच सदा सच पाखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है, से जिस सच दृष्ट शुभ करे हर यग पाप सकल मल। काम अर क्रोध काम क्रोध अर लोभ मोह, वस करे सबै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसार है खोवै। गुर नव निद दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसिय गुरु कै।

सवैये महले चौथे के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन ध्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूरज रह की आसा सतगुर शिव परम पद पायो अविनाशी अविगत ते आयो तिस भेटे दर दर न चंपै कल सहार तस गुण जंपै जंपौ गुण बिमल सो जन जन के रे अम्य नाम जा कौ फुरिया इन सतगुर सेब शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरी कव कल ठाकुर हरदास तने गुर रामदास सर्य पर परे छुटत परवाह आम्य आमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करह मन मज्जन पुब जिन्हों सेवा करिया तिन पौ निवारियन पै पद दीना शब्द मात्र ते उधर धरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर्य पर परे सत गुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कमल सहज प्रकाश्या अपै निरंजन करह लहा सत गुर दयाल हर नाम दृढ़ाया तिस प्रसाद वस पंच करी कब कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सर्य भर परी अनपाउ अनुमान अकल लिव लागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण पौ पागा चितलागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर्य भर परे अपारु परि पायो अपार दे अंतर धारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर भाई प्रेम रस आपे जाणै सतगुरु कै प्रसाद सहज से ती रंग माणै नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुरु रामदास कल उच्चरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अम्य रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपज दुरत दुरंतर नाशै सुख सागर पायो दिनत हर मग्न हुटै संजम सत संतोख सील सनाम फुटै सतगुर परमान बिदन सिरयो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उच्चरै तै पै अमर पद पायो जग जितों सतगुर परमान मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद सिद्ध तां की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुरु रामदास कल उच्चरै तैं हर प्रेम पदार्थ पायो प्रेम भगत प्रवाह प्रीत पुबली न हुटे सतगुर शब्द अथा आमे धारा रस गुटे मत माता संतोख पिता सर सहज समायो अजुनी संभवियो जगत गुर बचन तरायो आवेगत अगोचर अपर पार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तैं जगते उदाहरण पायो जगते उदाहरण नम नदान भगता पवतारण अमृत बूंद हर नाम बेशकी बिखै निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाइए धन ते जन बड़ भागी
ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਜਾਇਓ ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿ ਸ਼ਾਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਇ ਚੋ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸਨਾ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕੇ ਸੰਗਾਤ ਬੂਹੈ ਅਜੋਨੀਓ ਭਾਲੇ ਅਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾ ਲੁਚਰੈ ਤੋ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੁਰੰਤਰ ਨਾਸੈ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਨਿ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰੈ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਪਰਚੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕੀ ਅਥੋ ਜਨਮ ਜਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਭਜ ਕਲ ਕਬ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਘਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਰਸ ਜਾਣੇ ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਧਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹ

सतगुरु नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहु कत होवै जीउ। तारण तरन खिन मात्र जाक दृष्ट धारै, शब्द रिद विचार काम क्रोध खोवै जीउ। जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिखियाता, अहन सत्यान तावै पलक न सोवै जीउ। जाको देखत दरिद्र जावै नाम सो निधान पावै, गुरमुख ज्ञान दुर मत मैल धोवै जीउ। सत गुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहु कत होवै जीउ। धर्म करम पूरे सत गुरु पाई है, जां की सेवा सिद्ध साध मन जन सुर नर, जाचै शब्द सार एक लिव लाई है। फुन जाने को तेरा अपार निरपौ निरंकार, अकत कथन हर तुझ बुझाई है। भरम भूले संसार छुट हो जूनी संगार, जम को न डंड काल गुर मत त्याई है। मन प्राणी मुक्त विचार अहन से जप, धर्म करम पूरे सत गुरु पाई है। हाँ बल बल जाओ सत गुर सचे नाम पर, कमन उपमा दो कमन सेवा सरियो, एक मुख रसना रसो जुग जोर कर। फुन मन बच क्रम जान अनत दूजा न मान, नाम सो अपार सार दीनो गुर रिद धारू। नल कव पारस परस कच कंचना, हुई चंदना सुबास जस सिमर त्यान तारू। जां के देखत दुबारे काम क्रोध ही निवारे, जीहो बल बल जाओ सत गुरु सचे नाम पर। राज जोग तख्त दियन गुर रामदास, प्रथमे नानक चंद जगत भयो आनंद, तारन मनुख जन कियो परगाश। गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंचपूत बस कीने जमत नंतरास। गुर अमर गुरु श्री सत, कल युग राखी पत, अगन दिखत गत चरण कमल जास। सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुर रामदास। जिसे तारियो तरत अर व्यो म्यारु, पवन ते नीर सारे अवर अनल अनाद कियो। सस रिख निस सूर दिन सैल त्रु फल फल दियो, सुर नर सप्त समुन्द्र के तारियो त्र भमन जास। सोई एक नाम हर नाम सत, पायो गुर अमर प्रगाशु। कच्चो कंचन पयो शब्द गुरु श्रवण सुनियो, भिखते अमृत होयो नाम सत गुर मुख बण्यो। लोह होयो लाल नदर सत गुर जद तार, पाहण मानक करे ज्ञान गुर कहो विचार। काठों श्री खंड सत गुर कियो, दुख दरिद्र तिनके गए, सतगुरु चरण जिन परसिया, से पाश परेत सुर नर पए। जाम गुरु हुए वल तन क्या गर्व दिजय, जाम गुरु हुए वल लख बाहें क्या कीजय। जाम गुरु होय वल ज्ञान यार ध्यान अनन पर, जाम गुरु होय वल शब्द साखी सो सचै कर। जो गुरु गुरु अहनिस जपै, दास भट बेनत कह। जो गुरु नाम रिद में तरै, सो जन्म मरण दो थे रह। गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै, गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन
अघन कटे सब तीरी, गुर नैन बैना गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कै, जिन गुरु न देखियो न कियो, ते अके अत संसार में, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरण समृत कल युग, सुनत समाध शब्द जिस कीरी, फन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो तरत ध्यान बस्त तेनेरी, पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाह परेरी, जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास प्यूस पिवन की, बंचत सिद्ध को बिद मिलायो, पूर्ण पोमन ठौर बसो रस बासन स्यों, जो दहंग दिश तायो, गोबिंद बाल गोबिंद पुरी, सम जलन तीर बिपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन कोसो, गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अघन हरियो, निसबासुरी एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भान डरियो, पण दास वास जगत्र गुरु की, पारस भेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो, अब राखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाक्ष फारे करयाज, फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, शीनत बस्त्र दीन बहु साज, सुदामा आपदा ते रखिया, गनिका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कलयुग होए, राखो दास पाट की लाज, झूलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जप नाम नाम निदयप रसनिय हन सर सत कर जानियो, फुन प्रेम रंग पाइय गुरमुख है, तियाइय अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो, बचन गुर रिद तरु पंच पू बस करो, जन्म कुल उदरु द्वार हर मानियो, ज्यों त सब सुख इत युत तुम बंशुभो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जान दान हर मन तरो, ध्यान यह निस करो बचन गुरु हृदय धारो, फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो, संत गुरु सिख तरु नाम सच रंग सारु, सदा निरवैर निरंकार निरभउ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हारु, मुक्त मन भ्रम तजो नाम गुर मुख भजो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइय, उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हार, नाम नग हीर मन मिलत लिवलाइय, फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस, मैर दुरमत हिरत शब्द गुरु त्याई है, अमृत प्रवाह छुट कंत सद द्वार, जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाई है, नाम निर्बान निधान हर उर तरो, गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जां की सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर, गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे, फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करें, तरु प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे,
ਤਰੈ ਨਾਰ ਦਾਦ ਸਨ ਕਾਦ ਹਰ ਗੁਰ ਮੁਖ ਤਰੈ ਇਕ ਨਾਮ ਲਗ ਤਜੂ ਰਸ ਅਨਰੀ ਦਸ ਬੇਨਤ ਕਹੈ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੁਖ ਲਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤ ਜੁਗ ਜਿਨ ਧਰੂ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਉਧਰੀਆਂ ਹਸਤ ਕਮਲ ਮਾਥੇ ਪਰ ਧਰੀਆਂ ਅਲਖ ਰੂਪ ਜੀ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਸ਼ਰਨ ਆਈ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਜੀ ਤਾਰੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰੋ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਬਸੈ ਬਨਵਾਰੀ ਤਿਨ ਲੈਣਾ ਥਾਪ ਜੋਤ ਜਗਤਾਰੀ ਲੈਣੈ ਪੰਥ ਧਰਮ ਕਾ ਕੀਆ ਅਮਰਦਾਸ ਭੱਲੇ ਕਉ ਦੀਆ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਥਿਰ ਥੱਪਿਓ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਦ ਅਪਿਓ ਅਪਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਅਖੈ ਨਿਦ ਚਉ ਜੁਗ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਫਲ ਲਹੀਆਂ ਬੰਦਹਿ ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਸਾਧੂ ਜਨ ਜਪ ਹੈ ਕਰ ਵਿਚਿਤ ਚਾਉ ਆਨੰਦ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸਫਲ ਗੰਗਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਗਤੇ ਜੀਤ ਹੈ ਜਮ ਲੋਕ ਪਤਤ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਜਨ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਰਤੀ ਰਘੁਬੰਸ਼ ਤਿਲਕ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਰਤ ਘਰ ਮੁਨ ਬੰਚੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਲਾਕਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਮ ਸਾਗਰ ਤੁਲਾ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਾਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਹੈ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ ਕਉ ਪਦਵੀ ਉੱਚ ਭਈ ਤਜ ਮਾਇਆ ਬੋ ਲੋਭ ਅਰ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਬ੍ਰਿਥ ਆ ਗਈ ਅਵੇ ਲੋਕਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਭਰਮ ਸਭ ਛੁਟਕਿਆ ਦਿਬ ਦਿਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕਾ ਘਟ ਘਟ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਪਇਆ ਜਸ ਜਨ ਕੈ ਇੱਕ ਪੜਹਿ ਸੁਣੈ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੈ ਕਰਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਗੁਰ ਪੂਜਾ ਵਿਦ ਸਹਿਤ ਕਰੰ ਕੰਚਨ ਤਨ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਕਉ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਧਿਆਨ ਧਰੰ ਜਗ ਜੀਵੰ ਜਗੰ ਨਾਥ ਜਲ ਥਲ ਮੈਂ ਰਿਆ ਪੂਰ ਬਹੁ ਵਿਦ ਵਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਸੇਵ ਅਲਖ ਗਤ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨੰ ਜਿਨਹੁ ਬਾਤ ਨਿਸ਼ਚਲ ਤਰੂ ਜਾਨੀ ਤੇਈ ਜੀਵ ਕਾਲ ਤੇ ਬਚਾ ਤਿਨ ਤਰਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਰੁਦਰ ਖਿਨੀ ਇਕ ਮੈਂ ਜਲ ਹਰ ਬਿੰਬ ਚੁਗਤ ਜਗ ਰਚਾ ਕੁੰਡਲ ਨੀਸੁਰ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਚਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਉਪਰ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਸੇਵੀਐ ਸਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਮਲ ਨੈਨ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸ਼ੋਭ ਕੈ ਤਮਾ ਜਸੋਦ ਜਿਸੈ ਦਹੀ ਭਾਤ ਖਾਹੇ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤਨੂਪ ਮੋ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚੰਤ ਘਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਕਹੋ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈਸ਼ ਬਮ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤਿ ਸਾਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ
राम नाम परम तम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर को काहे जीव सुथर चित भगत हित भेख धरियो हर नाखश हरियो नक बेदार जीव शंख चक्र गदा पदम आप कियो शदम अपरम प्रपार ब्रह्म लखै कौन ताहे जीव सत सच श्री निवास याद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीव पीत बसन कुंद दसन प्रिया सहित कंठ माल मुक्त शीश मोर पंख चाहे जीव देव जीर बड़े धीर धर्म अंग अलक अगम खेल की आया अपने उशाह जीव अकत कथा कथी न जाए तीन लोक रया समाए सुतै सिद्ध रूप धरियो शान कशाह जीव सत सच श्री निवास याद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जीव सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जीओ बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कौर ने कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जीओ राम रमन दुरत दमन सकल पवन कुशल करन सर्वभूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनेंद जीओ जर्म कर्म मच्छ कच्छ हुबरा जमना के कूल खेल खेलियो जिन गेंद जीओ नाम सार ही ये धार ताज बकार मन गयंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जीओ श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जीओ गुर कया मान निज निदान सच जान मंत्र है निस बासर होए कल्याण लह परम गत जीओ काम क्रोध लोभ मोह जन जन संसाड़ तो होमै का फंद काट साध संग रत जीओ दे गे त्रिसने चित बिलास जगत एह चरण कमल सदा सिंह दृढ़ता कर मत जीओ नाम सार ही ये तार ताज बकार मन गयंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जीओ से

मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी एक मन, तन मन तन गोबिंद दियो। अंगद अनंत मूरत निज तारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो। गुर अमरदास करतार कियो वस, वाह वाह कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा, पुब भगत हर के जोगणं। अम्बरीक जय देव त्रिलोचन, नम अवर कबीर भणं। तिन कौ अवतार भयो कलपिंतर, जस जगत परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तैं हर परम पद पायो।

अरुआ गौरी अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण आग्यंतक बदै ना सल कव गुर रामदास तेरी शरण। सवैये महले पंजवें के एक ओंकार सत गुर प्रसाद सिमरंग सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुरमत मल नासी सतगुर चरण कमल हृदय धारं गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुरु रामदास कर की ओ परगाशा सगल मनोरथ पूरी आसा तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत जोग कौ जै तवार हर जन क्यों पायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन कर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन माणक संतोखयो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन कर गुर रामदास अनपाओ ठहरायो जनक राज बरताया सत जुग अलीना गुर शब्दे मन मान्या अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम साज सतगुर संग लीणा गुर अर्जन घर गुर रामदास अपरंपर बीणा खेल गुड़ो कियो हर राय संतोख समाचरियो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आज उन्नी संभव्यो सुजस कल कवियन बखाणो गुरु नानक अंगद वर्यो गुर अंगद अमर निदान गुर रामदास अर्जन वर्यो पारस परस परमान सद जीवन अर्जन अमोल्य जुनी संभव पै भंजन पर दुख निवार्य पार्य नंभव अगहा गहन परम्परांत दहन सीत सुख दातो असंभव दुबियो पुरख पूर्ण विधातो नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो तन तन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलायो जय जयकार जास जग अंदर मंदर पाग जुगत शिव रहता गुरपुरा।

तत् स्यों तत् मिलायो। अंगद कृपा तारि अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत शतर गुर राम दियो। गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण, मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण। सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो ओर, आद पुरख प्रतख लिख्यो अक्षर मस्तक धुर, प्रगट जोत जगमगै तेज भू मंडल छायो। पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो,

सगल सृष्ट लगबे तरो तेह जन जाचो जगत्र पर जानियत बासुर रैन बस जाको हित नाम स्यों परम अतीत परमेश्वर कै रंग रंगयो बासना ते बाहर पै देखियत ताम स्यों अपर परंपर पुरुख स्यों प्रेम लाग्यो बिन भगवंत रस नाहीं और काम स्यों।

फन बेद बेरंच विचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ नियाल करी।

जब लो नहीं पागल लार उदय तब लो भ्रमते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा।

फिर संकट जो न गर्भ न आयो। काल समुद्र भय रूप प्रगट हर नाम उदाहरण बसै संत जिस हृदय दुख दरिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई मन बच जिन जाने ओ भयो ते सम सर सोई। तरन गगन नव खंड मैं जोत स्वरूपी रहे ओ पर पन मथुरा कछु भेद नहीं। गुर अर्जन परतख हर अजय गंग जाली अटल सिख संगत सब नावे। नित पुराण बाचिए भेद ब्रह्मा मुख गावे। अजय चबर सिर टुलै नामी अमृत मुख लियो। गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो। हरवंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुर मोयो। देवपुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो। हर सिंघासन दियो श्री गुर तह बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंपै। असुर गए ते भाग पाप तिन भीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नर हुके गुर रामदास जिन पायो। शतर सिंघासन पृथ्वी गुर अर्जन को दे आयो। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सैभंग गुर प्रसाद श्लोक वारां ते वधीक महला पहला। ओ तंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी सस्सड़ सोईया किब करी निवण ना जाए थनी। गाचे जे लगा गिड़बड़ी सखिए धौलहरी से पी ढेंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी।

खड़गड़ में हर जो बस संतन के हो पुकार कौ नानक ते पज मना पौन दे उतरे पार सुख दुख जे पर से नहीं लोभ मोह अभिमान कौ नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाहीं जे कंचन लो समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे ते जान हरख सोग जाके नहीं बैरी मीत समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे ते जान पै काहू को देत न पै मान ते आन कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कौ नानक सुन रे मना ते दर माथे पाग जे माया ममता तजी सब ते पहो अदास कौ नानक सुन रे मना ते काट ब्राह्मण वास जे प्राणी हो मैं तजी करता राम पशान कौ नानक वह मुक्त नर ए मन साची मान पैनासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम

जय बा गुण गोबिंद पजो करन सुनो हर नाम कौ नानक सुन रे मना पर न जम कै ताम जो प्राणी ममता तज लोभ मोहंकार कौ नानक आपन तरै

पोदा उपजय बिन सनीत जाग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंदा कौ नानक बिन हर भजन परत ताए जम बंद जाओ सुख को चाहे सदा शरण राम की ले कौ नानक सुन रे मंदा दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कौ नानक बिन हर भजन बिरता जन्म सरान जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं पद रेओ बिसरेओ गोबिंद नाम कौ नानक बिन हर भजन जीवन कौन काम प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंद कौ नानक हर भजन बिन परत ताहे जम बंद सुख में बहु संगी पै दुख में संग न कोय कौ नानक हर भज मना अंत सहाई होय जन्म जन्म पर मत फिरेओ मिटेओ न जम को त्रास कौ नानक हर भज मना निरपै पावै बास जतन बहुत मैं कर रेओ मिटेओ न मन को मान

रदफुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो तो सो ना कियो पर यो लोभ कै बंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मैं रम रहे हो

कौ नानक मानस मरते पूरन होवे काम झूठ मान कहां करे जग सुपने ज्यो जान इन मैं कछ तेरो नहीं नानक के हो बखान गर्ब करत है देह को बिन सैशन में मीत

सोनर मुगता जान ते नर हरे अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित नानक बिद हर पजो एक मन हो एक चित तीरथ बरत और दान कर मन में तरे गुमान नानक ने फल जात ते ज्यों को चरे शनान सिर कंपे ओ पग डग मग नैन ज्योत ते हीन कौ नानक बिद पई

मिटा दर्श तोहारो होए मुदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पई आओ

गुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगण संग लापे आठो नंदन प्रथम राग पैर होवे करही पंज रागनी संग उचारही प्रथम पैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनस लेकी के पे बारी ये पैरों की पंचो नारी पंच मर्द सा सुनावे बंगाल मदमाद बगावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पात सुपुत्र पैरव के गावे गायन पातेरे दुधिया माल कौशकला पै संग रागनी पांचों था पै गुण करी और देव गंधारी गंधारी स्योती उचारी तनाश्री पांचों गाई मारा कौ साक संग लाई मारु मस्तंग में बारा पर बिलचन कौशके बारा खो खड़े पौर नद गाये अष्टमाल कौ साक संग लाए पुनाये हिंडोर पंजनार संग सोती उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर साई सरसी लह पार जा संग लाई पंचों आर जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र में मंगल सहाय सरस बान हो आए बनोदा गावे सब संत कमोदा अष्टपुत्र में कह सवारी पुनाई दीपक की बारी काशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी ओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले ओ रामा कमल गु चंपक नामा गौरा ओ कन लकले अन्ना अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल सिरा वह गावे पांचों संग बरंगन लावे बैरी रि बैरारी करनाटी तरी गौरी गावे आसा वरी ते पासे सिंधवी अलापी श्री राग स्यों पांचों थापी सालु सारग सागर आय और गुण गंभीर अष्टपुत्र श्री राग गुण कौम अमीर खसम मेघ राग वह गावे पांचों संग बरंग खसम मेघ राग वह गावे पांचों संग बरंगन लावे सोड गुण मलारी तो नहीं पुन गावे आसा गुर गुनी उच्च सुर सोम पुन गिनी मेघ राग स्यों पांचों चिन्ही

सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी राम कली। महला तीजा, आनंद क्यों अंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सह सेती। मन वजिया वधाइया, राग रतन परिवार परिया, शब्द गावने आईया। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जिनी बसाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब सारना। अंगीकारो करे तेरा कर सब सवारना, सब नंगला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरे सब की जय दे सो पावे, इसदा सिसला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसया वाजे जबद गनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे। साचा नाम मेरा आधार हो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जे दियां वड्याईया। कहे नानक सुनो संतो शब्द रहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार हो, वाजे पान शब्द कर सुभागे। कर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पई दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तोर करम पाया।

भाग्यो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुरे आप पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुरे आप पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा

मत भुल गए कि कलगिया वाले पातशाह के अंदर इदा की कित तमा ना होगी, इदा की तमन्ना ना होगी, जरूर होगी। हम बच्चों की खातर बंदा की कुछ नहीं करता है, कहिंदा तीर्थ तीर्थ सैर करावे, गुगे ते मड़ियां पजवावे, सिव्या उत्ते मास नावे, अणहोईयां गल्लां करवावे, पुत्तर जी ना वस्त प्यारी ते जिस दी भुखी दुनिया सारी। मेघनाथ दी मौत ते राम रोया, मेघनाथ रावण दा मुंडा सी, बरछी मेघनाथ दे वजी ते गशा खा खा के रावण डिगदा सी, पुत सी ना, पुत इदां दे गुरु प्यारे ओ किते पुत दे कंडा लग जावे ते मापिआं दीआं चीखां निकल जांदीआं। मेघनाथ दी मौत ते राम रोया, बाण मोह दे सुटिया चीर सी दिल, जदों मरिया अभिमन्यु ते पांडवां दा हो गया फिर डाढा दलगीर सी दिल, तीर लगा जा सरवण दे विच सीने, होया मापियां दा लीरो लीर सी दिल, दिसणों हट गया जदों सी पुत दोवें राजे दशरथ दा होणी गई चीर सी दिल, धन दौलतां सुख आराम छड्डे, कदे शाह ते कदे फकीर सी दिल, टोटे चिगर दे वार ते लाल चारे, नहीं रोया ए गहर गंभीर सी दिल, सारा बंश गवा के दर्दियां दा लोको दर्द वंडा के दसिया सी, आ लोकी पुत व्या के हसदे ने पर उदा ता पुत मरवा के हसिया सी, ओ पिता पुत मरवा के हसिया सी। सिखा तेरी आजादी दी खातर, तेरी स्वतंत्रता दी खातर, गुरु कलगियां वाले पातशाह ने अपनी हर आजादी नू खे कीता और अपनी आजादी तेरी झोली विच पा के गए, इनू आजादी नू सांभ के रखना तेरा फर्ज बनता है। माधो दास नू मैं बेनती की थी कि दो महीने हुए सन, गल एक विचार करने वाली है, अपन ध्यान करना हुण इदां दे टावे टावे गुरु प्यारे समय मिलते हैं, हफ्ते बाद सानू समा मिलिया करना तुहाडे नाल दिल दीआं गल्लां करन वास्ते, नहीं तां थोड़ी संगत हुंदी आ उत्थे बंदा किन्नीआं गल्लां की गल्लां करेगा, है ना। इतिहास सुना के असीं वी टाइम पास करन दा यतन करीदा, और जदों तुसीं आउंदे आ फिर सानू पता ही नहीं, टाइम साडा एक मिनट भी लै जावे ना कोई ते सानू होर तरह लगदा, तो साडे नाल होई आ पांच सत्त मिनट साडे अगे चले गए, गुरु महाराज कृपा करे। खैर मैं तुहाडा ही टाइम लै रहा, मैं किहड़ा घरों लै के आया, खैर मैं जिहड़ी तुहाडे नाल गल कर लगा, जदों कलगियां वाले पातशाह बाबा, इत्थे एक होर घटना वापरदी है, हले डेढ़ क महीना होया सी कलगियां वाले पातशाह ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं मिलिया ने, ते की होनी एक की घटना वापरदी, वजीर खां दे दो भेजे हुए उह पापी बंदे आके कलगियां वाले पातशाह दे उत्ते छुरे दे नाल वार करदे ने, वखी पाड़ के रख, कलगियां वाले पातशाह दे वखी दे उत्ते वार कीता, आखर इसे वार दे करके वह ज्योति ज्योत समा गए सन, और जेड़ी पहला गाथा सुनी सी शहीदां दी जां पंजाब दी, वह ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कन्ना नाल सुनी, ते कलगियां वाले पातशाह दे उत्ते जिहड़ा हमला होया वह ते अखीं देख लिया ना। हुण बाबा बंदा सिंह बहादुर बहुता चिर अटकण वास्ते तैयार नहीं, मैं फिर इत्थे इक तुहाडे नाल रोक के गल करनी चाहुंदा। हुण प्यारिओ कलगियां वाले पातशाह कहिंदे, बंदा सिंह असीं तैनूं कौम दा जथेदार बना के ते पंजाब वल नूं तोरन लगे आ, और ये पंज प्यारे ते 20 सिंह नाल लै जा ते दुश्मनां दा लभ लभ के शिकार कर। गुरु प्यारे उत्थे कला हो सकदी सी, उत्थे कलेश हो सकदा सी, एक गल दा पता कहदा, जे किते अज दे जमाने दे विच हुंदा ने कलगियां वाले पातशाह ते कलेश हो जाणा सी, किवें दाता सानू भी साल हो गए तेरे चरणा दे नाल, कदों दे तेरे नाल तुरे फिरदे, किन्नियां जंगा लड़िया, साडे परिवार खत्म हो गए, असी अपने पुत मरवा लै, ठीक है तेरे पुत भी मरे आ पर साडे भी भरा मरे ने जंगा दे विच, ते दाता जथेदारी देण दा टाइम आया तां दोवां महीनिया दा इक हले बंदा हुण आ के नाल रलिया, इहनू तुसी जथेदारी दे रहे हो। हुण गुरु प्यारिओ अज देखे ना, हो रहा ना इदां ही, जे किते साडे कौम दे विच जे कोई नवा बंदा आ जावे ना, नवा बंदा आ जावे और उहदे विच उह गुण होण कौम दी अगवाई करन वाले, ते जिहड़े बुढ़े आ ना चिट्टियां दाड़ियां वाले पंजाब दे लीडर, उह कहिंदे लै कल दा छोकरा आ गया, इन्हें पंजाब दी इन्हें सिखां दी अगवाई करन, इदां लत्तां खिंचदे असीं, लत्तां खिंचदे नहीं, लत्तां तोड़न दा यतन करीदा, बंदे नूं मारन दा यतन करीदा, वी साडियां कुर्सियां जे इह अगे आ गया ते साडियां कुर्सियां किधर जाणगियां, मैं कदों दा प्रधानगी उड़ीकदा जे इह दूजा मेरे मोहरे आ गया, तां मैं कदों बणागा, मैं जथेदार कदों बणागा, इह साडी कौम दे हाल है। पर उत्थे बाबा